0: जूं बताएगा तब पुलान जुट गायुगा।
1: शो आई
0: लायस डरे कुंग डे का मशोगो।
1: असा
0: उन जगगरों आया उन कुंग दवांग ग्लोल हाँ।
1: ओके फ्रेंड बाय बाय।
2: Mga katrupa, exciting!